सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 28 जून 2026 रविवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:29 पर।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ गाँव चले एपिसोड 13। आज का कार्यक्रम आधारित है गाँव अकबरपुर अम्बाला पर। प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपुरी। राज्य सरकार के PhD विभाग के अमित खोसला, सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह कार्यक्रम आपके लिए हम लाए हैं। आओ गांव चले। आज हम आए हैं अंबाला के एक गांव जिसका नाम है अकबरपुर। आज हम जानेंगे इस गांव के बारे में, इसकी व्यवस्था कैसी है, इसकी उन्नति कैसी है, ये गाँव कितना आगे बढ़ा है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम गाँव में जाते हैं तो हम सरपंच से बात करते हैं, क्योंकि सरपंच गांव का मुखिया होता है, उसको हर एक चीज के बारे में जानकारी होती है। और एक सबसे अच्छी बात यह है, अब गांव भी शहरों की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब गांव के जो मुखिया है, जो सरपंच है, वो भी युवा है। तो आज हम बात करेंगे गांव अकबरपुर के सरपंच श्री राम निवास जी से, और उनसे जानेंगे गांव के बारे में, गांव की व्यवस्था के बारे में। रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आओ गांव चले में। तो हम आज पहली बार आपके गांव में आएंगे, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका नाम क्या है, आपने शिक्षा कहाँ ग्रहण की और कब से आप सरपंच हैं।
1: नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ अपना, और आने वाले नए साल की बधाई भी देता हूँ साथ साथ में।
0: जी, आपको भी बधाई।
1: सर, मेरा नाम है रामनिवास और मैं खंड साहा के अंदर पड़ता है गांव अकबरपुर का सरपंच हूँ मौजूदा
0: जी।
1: और मैं नवंबर 2022 में सरपंच चुना गया, और सरपंच बनने का मेन मकसद कोई ज्यादा वो नहीं था, ये है भी लोगों ने कहा और हम सरपंची में आ गए
0: जी।
1: दो चार दिन में तैयारी करके सरपंची में आए और लोगों की इतनी सपोर्ट मिली, भी एक तरफा बहुमत से जीते थे
0: जी।
1: और जैसे कि युवा हैं तो सरपंचों के सभी के मकसद रहते हैं भी उनका गांव साफ सुथरा रहे, सभी सुविधाएं मिले गांव वालों को, तो उन्हीं पर हमने काम किया है। और आज अगर आप देखोगे गांव में घूम के, गांव चारों तरफ से बिल्कुल स्वच्छ है, जो शौचालय वगैरह है वो भी परमानेंट बने हुए हैं, सबकी साफ सफाई है, गाँव में एक जोहड़ की व्यवस्था की हुई है, और जो गंदा पानी निकलता है नाले से वो भी नाला अच्छे से सफाई करवा देते हैं, बरसातों से पहले ही सफाई करवा देते हैं। आप देखो कई गांव में पानी आता है लेकिन अपने गांव में कभी पानी की मार नहीं हुई, हम टाइम रहते ही सफाई करवा लेते हैं अपने उसकी। सरकार से तो सभी गांव वालों को उम्मीदें होती हैं, अभी सरकार क्या क्या देगी क्या क्या देगी।
0: तो ये जानना चाहूंगा कि आपके गांव की जो व्यवस्था है उसमें जब आप सरपंच बने तो आपके क्या लक्ष्य थे जिससे आप अपने गाँव को, अपने गाँव वासियों को एक अच्छी जिंदगी, एक स्वच्छ जिंदगी दे सके।
1: सर, लक्ष्य तो पहले यही था भी मेरा गांव बिल्कुल स्वच्छ हो, गंदगी कहीं पर भी ना हो, गलियां नालियां सब स्वच्छ रहें, और मेन पानी का, जो पीने का पानी है वो स्वच्छ आए हमेशा, कहीं भी कहीं पर भी कोई दिक्कत ना रहे, किसी के घर गंदा पानी ना जाए, और स्कूल की सुविधा, धर्मशालाओं की सुविधा, ये सारे अच्छे से साफ सुथरी रहें, लोगों के ठहरने की बैठने की व्यवस्था रहे।
0: आपके गांव में कितनी आबादी होगी और कितने अंदाजा वोटर्स होंगे?
1: वोटर 540 है और आबादी 735 के लगभग है।
0: मतलब 735 परिवार रहते हैं?
1: नहीं, 735 कुल आबादी है गांव की, छोटा सा गांव है
0: जी,
1: और मेरे ख्याल से 140 के लगभग परिवार हैं
0: जी। हम आज आपके गांव में आए हैं और जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की
1: जी,
0: उनकी ओर से हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका कार्यक्रम रेडियो पर चलता है, उस कार्यक्रम का नाम है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी
1: जी सर।
0: तो आज हम आपके गांव के बारे में जब जानेंगे और जब यह कार्यक्रम प्रसारित होगा तो जो हमारे अंबाला के आसपास गांव है उन तक भी ये बात पहुंचेगी। हमारा मकसद भारत सरकार की ओर से ये जानना है कि आपके गाँव में क्या हर घर में नल से जल आता है?
1: बिल्कुल आता है सर, हर घर में नल लगे हुए हैं सर, और प्रॉपर तरीके से मेंटेन है सब, अच्छे से पानी आता है, किसी को भी पानी की कोई दिक्कत नहीं है सर। और सबसे बढ़िया तो जो अपना ये ऑपरेटर साहब लगे हैं, ये टाइम टाइम पर उसमें दवाई भी डालते हैं ताकि लोगों को पानी से संबंधित कोई समस्या ना आए
0: जी।
1: मैं कहता हूँ जी, ऐसी सुविधा पूरे अंबाले में कहीं नहीं होगी पानी की जैसी हमारे गाँव में है, बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था है।
0: तो पानी की जो सप्लाई है वो पूरे दिन रहती है या किसी खास समय पे, सुबह शाम रहती है?
1: टाइम से रहती है, सुबह जैसे 6 बजे से चलाते हैं 9 बजे तक रहती है
0: जी,
1: और शाम को लगभग 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक रहती है।
0: आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक समय हमारे देश में ये था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो अपना बाल्टी या घड़ा या कोई भी बर्तन लेके कहीं दूर दूर से पानी लेके आती थी, एक पुराना जो गांव होता था उसका एक दृश्य ऐसा होता था। तो क्या आपके गांव में आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है?
1: बिल्कुल देखा है सर, हमारा बचपन इसी चीज में गुजरा है
0: जी।
1: गांव में चारों तरफ कुएं होते थे
0: जी।
1: और अभी तो एक कुआ हमने उसके क्या कहते हैं निशानी के तौर पर रखा हुआ है, जिसके ऊपर जाल डाला हुआ है
0: जी।
1: और कुआ ये भी नहीं अभी उसमें पानी सूख गया, उसमें पानी भी है सर, पर ये अभी अब कोई पीता नहीं पानी कुएं के, जितने सब नल से पानी पीते हैं।
0: हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अंबाला वासियों को ये कहना चाहते हैं कि जो वो प्रथा थी वो अगर खत्म हो गई है तो इसका मतलब पानी का जो प्रवाह है, जो पानी का जो इंतजाम गांव वालों के लिए है, अब वो पूरा है।
1: देखो सर, पानी का इंतजाम तो मैं कहता हूँ मेरे गांव में तो एक्स्ट्रा है
0: जी,
1: पूरा ही नहीं एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा, इतना गांव का और पूरा पट जाता है पानी, इतना है मेरे पास, हर घर में पानी पहुंच रहा है।
0: ये अच्छी बात है कि
1: बहुत बढ़िया है पानी की।
0: ये अच्छी बात है कि आपका गांव आत्मनिर्भर है। आपके कहने से मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर और किसी गांव को पानी की जरूरत है हम उनको भी दे सकते
1: हैं। हम देते हैं सर, फ्लेल माजरा और मिठापर तक पानी चला जाता है
0: हमारा। इसके साथ जुड़ता हुआ मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगा, वो ये है कि स्वच्छता जो आपके गांव की है उसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, चाहे वो गांव की गलियों की स्वच्छता हो या घरों की स्वच्छता हो, जो प्रबंधन है उसका वो आप कैसे करते हैं?
1: देखो सर, एक तो हमने स्वीपर रखा हुआ है, सरकार की तरफ से उपलब्ध है स्वीपर, वो स्वीपर कचरा तो सुबह इकट्ठा कर लेता है वो, उसको गाड़ी दी हुई है और साफ सफाई भी करता है। जब मान लो कचरा ज्यादा हो जाता है, जैसे आंधी तूफान आते हैं उस समय व्यवस्था कर देते हैं, दो चार लेबर लगा के साथ में उसके सफाई करवा देते हैं। मैं नहीं मानता भी कहीं गंद पड़ा होगा हमारे गाँव में,
0: उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। जब हम आपके गाँव में आए और गाँव में जब हम गलियों से चल के यहाँ आपके घर तक आए और बाकी गांव वालों से भी जब हमने बात की, हम स्कूल में भी गए
1: जी,
0: और बहुत अच्छा लगा, खुली डुली जगह है और साफ सुथरी जगह है
1: जी सर।
0: आप मुझे ये बताएं कि हमारा पर्सनल हाइजीन, चाहे हम पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, तो आपके गांव में जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में क्या आप लोगों को जागरूक करते हैं? जैसे हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, या जब हम खाना खाने बैठें तो उसके पहले हम अपने हाथों को साफ करें ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा भी आज हर परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपने से साफ सफाई रखने का इंतजाम पहले से ही रखते हैं, लेकिन फिर भी हमने कई बार छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं गांव में और पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी कई बार, लेडीज के ऊपर भी बहुत बातें की हैं। प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, और मेरे ख्याल से पूरे गाँव में आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा सर गंदा कोई हो।
0: चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आप एक युवा सरपंच है
1: जी सर,
0: हमारा देश हमारे गांव से बनता है
1: जी,
0: अगर गांव उन्नत है, अगर गांव की तरक्की है, तो ये मान के चल सकते हैं हमारे देश की तरक्की
1: है। बिल्कुल है सर,
0: देश आप युवा होने के नाते आपके आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य है, किस तरीके से आप पानी का प्रबंधन करना चाहेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है पानी की वो आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, मीन्स पानी का जो प्रवाह है जमीन के नीचे वो कम होता जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ ऐसे आप प्रबंधन कर रहे हैं?
1: सर, मैंने सरकार को दो बारी रेजुलेशन डाल के दिया है
0: जी,
1: भी जब बरसात का पानी आता है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता है
0: जी,
1: उसको जमीन में उतारने के लिए छोटे छोटे बोर किए जाएं ताकि वो जमीन में अच्छे से रह जाए, छोटे छोटे कुएं बनाए जाएं, और मैं कहता हूँ बरसात का जो पानी इकट्ठा होता है ना वो स्वच्छ होता है
0: जी,
1: वो इतना गंदा नहीं होता,
0: नहीं होता।
1: जब शुरू में पहला पानी निकल जाता है उसके बाद का आप जमीन में स्टोर कर सकते हैं सर
0: जी जी।
1: और मेरे गांव में ऐसा मतलब कोई तालाब भी नहीं है जो बड़ा तालाब हो जिसमें हम स्टोर कर सके, तालाब है एक छोटा है लेकिन उस वो
0: इतना बड़ा इतना ज्यादा नहीं है।
1: हाँ, वो एक बारी भर जाता है और पूरे साल तो सूखता नहीं है सर।
0: आपसे जानना चाहूंगा कि आप सरकार को इस विषय के एक्स्ट्रा अपने गांव में क्या किसी चीज की कमी है जो आप चाहते हैं सरकार को कहें, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक जाए, अगर आपकी कोई ऐसी बात है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत आए हैं, स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी इस कार्यक्रम के माध्यम से आए हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके गांव में अगर किसी चीज की कमी है तो आप सरकार से क्या मांगना चाहेंगे?
1: सर, कमी तो मैं ये कहूंगा, एक तो हमारी जो मेन सड़क है ये ना तो मंडी बोर्ड के अंदर है और ना ही उसके पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, इन्होंने ये 7-8 किले की सड़क है वहां से अड्डे से लेके गांव के तक, जबकि ये सड़क 44 फुट चौड़ी है, दोनों महकमों ने अपने अंडर नहीं ले रखी।
0: अच्छा,
1: मैं पिछले 3 साल से लगातार कई बार जा चुका हूँ, दोनों जीआई एसडीओ से बात भी कर चुका हूँ, इसको एक तरफ तो लगाओ, लेकिन किसी ने नहीं लगाई। और आपने देखो वो छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ है, ना ही हमें पंचायत को दिया जाता है भी, आप पंचायत खुद बना दे इसको
0: जी।
1: हम तो पंचायत की तरफ से भी इसको बनाने के लिए तैयार हैं अगर बन जाता है तो मैं तो यही चाहूंगा कि एक तो ये टुकड़ा उसमें या तो पीडब्ल्यूडी को दिया जाए या फिर मार्केट बोर्ड को दिया जाए। और दूसरा जैसे पंचायती भूमि है अपनी यहाँ पे पड़ी है, एक उसमें शमशान घाट भी है उसी में पंचायत भूमि के साथ, सरकार से अपील करेंगे भी उसको जल्दी से निपटारा कराए और पंचायत के हक में लेके आए उसको, ताकि उसका जल्दी से साफ सफाई करा के बच्चों के लिए वहाँ ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था की जाए। और भी बहुत स्कीमें हैं जो सरकार की, वो सभी लागू की।
0: मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके गांव में खेल कूद का कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
1: बस वही खेल कूद का ही काम नहीं है सर, क्योंकि ग्राउंड की कमी है। अब ये छोटा सा स्कूल है, आपने देखो स्कूल में गया, उसमें इतना बड़ा ग्राउंड
0: नहीं है।
1: उसमें बच्चे छोटे बच्चे ही खेल पाते हैं, उसमें बड़े बच्चों के लिए मतलब व्यवस्था नहीं है। बड़े बच्चे दूसरे गाँव में जाते हैं, जैसे संभाड़खा हो गया, साहा हो गया, ऐसे
0: वहाँ जाते हैं।
1: हाँ जी,
0: आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे इस सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के माध्यम से आप अपने गांव वासियों और आसपास के जो लोग रहते हैं इस रेडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: सर मैं तो स्वच्छता के ऊपर ही संदेश देना चाहूंगा भी, सभी को अपने पर्सनल स्वास्थ्य के बारे में और गाँव के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर भी कोई गंदगी या कबाड़ वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, जिससे बदबू वगैरह फैले, लोगों को दिक्कत हो। और स्वच्छ रहेंगे, गांव स्वच्छ रहेगा, देश भी स्वच्छ रहेगा सर।
0: तो एक जमाना था कि जब हम जो हम वॉशरूम घर में नहीं होता था तो हमारे पुरुष और महिलाएं बाहर जाते थे
1: जी, जाते।
0: वो चीज अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है?
1: बिल्कुल सर, अब पूरे मैं तो कहता हूँ मेरे गांव में क्या सर, आसपास के गांव सभी में बंद है अब तो।
0: चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तपन जी से हमने बात अभी की, राम निवास जी से। हमारे साथ है पीएचई डिपार्टमेंट अम्बाला छावनी से सुनील कुमार जी। सुनील जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम आऊं गाँव चले में।
1: धन्यवाद।
0: आज हमने यहाँ बात की है स्वच्छ सुजल गाँव की कहानी रेडियो की जुबानी। आप इस गाँव में आते हैं तो आप इस गाँव के बारे में और आपको कितना सहयोग इस गाँव से मिलता है और आपका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है?
1: सर, मैं देखो 2012 से इस गांव में आ रहा हूं। मैंने बहुत से लोगों से, तकरीबन सभी गांव वालों से बातचीत भी की है। हम यहां BWSC कमेटी की मीटिंग भी लेते हैं, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। तो शुरू से आ रहा हूं, मतलब जैसे अम्बाला के गांव हैं तो सारे ही अच्छे गांव हैं। तो जैसे अम्बाला के मेरा ब्लॉक साहा है, तो ब्लॉक साहा में अकबरपुर गाँव ये पड़ता है। एक तो सर ये छोटा सा गाँव है, ठीक है, इसकी गांव की गलियां साफ सुथरी हैं। और शुरू में जब हम ने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था तो कुछ लोग थे कि हाँ, उनकी ओपन टैप चलती रहती थी, तो हमने मीटिंग्स करके डोर टू डोर सर्वे करके उनको समझाया और आज आउटपुट निकल के आई है कि कोई भी जो व्यक्ति है पानी को वेस्ट नहीं करता
2: जी।
1: और गांव का हमारा आने का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जल संरक्षण करना
2: जी,
1: क्योंकि हमारे पास 1% से भी कम पानी हमारी धरती में रह गया है जीवन व्यापन करने के लिए। क्योंकि अगर हम 1% से भी कम पानी को नहीं संभाल सके तो हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी, हवा के बाद पानी ही ऐसा तत्व है कि जो जीवन के लिए जरूरी तत्व है। अगर हम पानी को ही ऐसे वेस्ट करते रहे तो हमारा जीवन संभव ही धरती पर नहीं।
0: और आगे की जो हमारी पीढ़ी आएगी उनको देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं होगा,
1: कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि हमने खुद भी अदर स्टेट में विजिट किया, हमने छोटी छोटी थैलियों में पानी को बिकते देखा है सर
2: जी।
1: तो हम नहीं चाहते कि हाँ, हमारे यहाँ अम्बाला में भी ऐसी स्थिति आए। हम लोगों को यही संदेश देते हैं, इसीलिए ही मोटिवेट करते हैं कि जितना जरूरत हो पानी को उतना लें, बाकी अपनी टैप को बंद कर दें। यहाँ तक कि सर, जिनकी टैप टपकती भी है, हम उन लोगों को भी कहते हैं कि टपकता पानी एक तो ठीक नहीं रहता, और दूसरे तरीके से हम लोग जैसे सुपरस्टिशियस हो गए हैं आजकल, तो हम कहते हैं कि अपने बाथरूम का पानी बंद कर लो, इससे आपके घर में बरकत नहीं रहेगी
2: जी, जी।
1: तो लोगों को उस तरह भी समझाते हैं।
0: मकसद यही है कि पानी को बचाना है और पानी का प्रॉपर
1: इस्तेमाल करना है।
0: आप राज्य सरकार के इस समय प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार आपको कितनी मदद करती है, कितना सपोर्ट करता है, कितना प्रोत्साहन देता है कि आप गाँव में, अलग अलग गाँव में जाएं और फिर उस गाँव के बारे में आप बात करें, लोगों को प्रेरित करें, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं?
1: सर देखो, हम गाँव में जाते हैं, जो गाँव में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम अपने अधिकारियों को बताते हैं और अधिकारी उस पर हेड ऑफिस मीटिंग में बताते हैं
2: जी।
1: तो सरकार का पूरा साथ रहता है इसमें, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स गांव में होती हैं तो सरकार उसको हमें ग्रीवेंस में डालते हैं उनकी, और पूरा साथ देती है गांव में कोई दिक्कत ना हो। यहां तक कि जैसे लास्ट गांव मोड़ा में प्रॉब्लम आ गई थी सर, ठीक है, मोड़ा में चीफ इंजीनियर श्री राजीव बाती सी आए, तो उन्होंने अपना पूरा ऐसी साहब, संडे को भी सारा स्टाफ हमारा गांव में ही रहा जब तक समस्या ठीक नहीं हुई, तो वहां के इंसेनेटरी कनेक्शन वगैरह सब हमने सही तरीके से करवा के तब वहां पे स्वच्छ पानी पूरा पीने लगे लोग, और लोगों को समझाया जिनके इंसेनेटरी कनेक्शन थे कि भाई इनको आप ठीक कराओ, और डिपार्टमेंट ने और लोगों ने मिलकर आपस में दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया, और तभी ये संभव हो सकता है, क्योंकि अकेला विभाग भी कुछ नहीं कर सकता। अब सर हम गांव में जाते हैं, अगर हमें लोग नहीं जानते, लोगों को हम नहीं जानते, तो काम करना संभव नहीं होता।
0: यानी कि गांव के साथ आपका संपर्क बना है,
1: बिल्कुल,
0: चाहे वो स्कूल हो चाहे सरपंच जी हो।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: आप अम्बाला के उन श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो की दस्ता सुन रहे हैं, वो अपने गाँव को स्वच्छ करें, अपने पानी का प्रॉपर यूज करें, पर्सनल हाइजीन के बारे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
1: सर मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वैसे तो हर व्यक्ति अवेयर है, हर व्यक्ति जागरूक है, आजकल ट्रेंड चला हुआ है आरओ का
2: जी,
1: ठीक है, अम्बाला में आरओ की जरूरत नहीं है सर। अम्बाला का जो TDS है वो 200 से 250 के बीच है,
0: यानी कि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है,
1: बिल्कुल अच्छा पानी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो अम्बाला का पानी है ना, नेचुरली पानी धरती से निकल रहा है, वो आरओ से भी बहुत बढ़िया पानी है। आरओ तो सभी मिनरल्स को खत्म कर देता है, और गांव के जो हमारे अम्बाला के

0: गांव के लोगों के साथ, और साथ में आपका स्वागत भी करता हूं कार्यक्रम आओ गांव चले में, जो हम आज गांव अकबरपुर में आए हुए हैं।
1: नमस्कार सर, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरा। और सर मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम गांव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जो हमारा पानी है वो 1.6% से भी कम रह गया, 1.6% से
0: जी।
1: तो गांव वालों को ये बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, हमने कोई अपना समरसीबल लगवाया हुआ नलका लगवाया है, वो पोर्टेबल वाटर नहीं है। जो हम PHED से पानी दे रहे हैं वो पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल मतलब पीने का पानी
0: जी।
1: तो लोगों से ज्यादा हम आग्रह करेंगे कि वो पानी ना पिए। हमारा जो ट्यूबवेल है उसकी हम जो भी चेकिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, आफ्टर मानसून प्री मानसून उसके सैंपल होते हैं, और इसके जो हमारा बैक्टेरोलॉजिकल टेस्ट होता है महीने में एक बार होता है सर
0: जी। यानी कि लोगों के लिए जो पानी है वो स्वच्छ मिले, साफ सुथरा मिले
1: जी, जी सर,
0: ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए
1: जी सर।
0: तो क्या संदेश देना चाहेंगे सभी अंबालावासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: सर यही बात कहेंगे कि आज अगर हम ये बात कहें कि दूध महंगा है या पानी महंगा है, तो हम यही कहेंगे कि पानी ज्यादा महंगा है
0: जी।
1: आज आप अगर मान के चलो कि जो एक बोतल है 20 रुपए की आ रही है सर, अगर 1000 लीटर की टंकी है हमें 20 रुपए के हिसाब से भरनी पड़ जाए सर,
0: और उसकी कीमत हम आंक सकते हैं कितनी
1: जी
0: कीमत
1: सर
0: है उसकी
1: जी। 20,000 रुपए का लीटर पानी हम हर रोज पी रहे हैं सर
0: जी।
1: तो यही आग्रह करूंगा मैं अपने अम्बाड़ा वासियों को कि पानी को जितना उपयोग हो सके उतना ही इस्तेमाल करें, और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को पानी दें और पानी को सुरक्षित रखें सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे से बात की और आपने हरियाणा राज्य सरकार की ओर से अपनी बात रखी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: गांव अकबरपुर से ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में है ट्यूबवेल के ऑपरेटर रमेश चंद जी। रमेश चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप ट्यूबवेल चलाते हैं, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करते हैं, क्या ख्याल रखते हैं आप उसका, और क्या टाइमिंग होती है जब आप अपने गांव वालों के लिए पानी का प्रवाह देते हैं?
1: सर जी, देखो सवेरे में 6 बजे से 9 बजे तक चलाता हूँ
0: जी।
1: बीच में भी कोई फंक्शन हो, किसी का प्रोग्राम हो, वो बोल देते हैं अभी हमें 1 घंटा पानी दे दे, हम उनको वो भी दे देते हैं
0: जी।
1: फिर भी हम उनको ये बोलते हैं अभी ये पानी पीने के लिए है, वेस्टिंग करने के लिए
0: जी जी।
1: तो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक चलाते हैं जी। 7 बजे तक चला के फिर भी कई लोग ऐसे हैं ऊंचा नीचा लाता, उसमें कहीं ऊपर नीचे पर, तो फिर भी किसी का फोन भी आ जाता है, फिर भी हम उसको 1 घंटा फिर भी फालतू दे देते।
0: आपसे मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न करना चाहूँगा, वो ये है कि आप

0: लोगों के लिए जब पानी वहां से छोड़ देते हैं, तो क्या कभी ऐसा दिन रहा कि जब आप वहां ना जा पाए और लोगों को पानी ना मिला हो?
1: नहीं, ऐसा तो कोई दिन ही नहीं है जब कोई भी वैसे जी देखो आंधी तूफान आ गया।
0: हाँ नहीं, वो ठीक है।
1: हाँ जी, तो लाइट नहीं आई, वो तो देखो मजबूरी है जी,
0: जी।
1: उसमें तो कोई पानी नहीं पहुंचेगा, फिर भी हम मान लो बिजली वाले से रिक्वेस्ट करते हैं भी थोड़ी देर के लिए बिजली का इंतजाम कर दो, हमारे गांव में जो पानी आ उसके लिए गांव प्यासा मर रहा, उस वास्ते पानी है।
0: ये माना जाता है कि पानी पिलाना धर्म का कार्य है। जो आप ये कार्य आप कर रहे हैं तो आपको दिल की जो संतुष्टि है वो कितनी है?
1: उसको तो मेरी तो पूरी की पूरी 100%
0: संतुष्टि है।
1: हाँ जी, मैं तो अपने गांव वालों को ये बोलता हूँ भी देखो किसी गांव में कोई कैसी बंदा
0: जी,
1: मैं तो आपको जिस टाइम भी आप आधी रात बोलेंगे, आधी रात, दोपहर को, शाम को, जिस टाइम भी आप ये कहेंगे भी हमने पानी पीना है, हम पानी के लिए कैसे मर रहे हैं, हम उसी टाइम आपके वास्ते पानी
0: छोड़ देंगे। ठीक है।
1: और गांव वालों को भी ये कहता हूँ, देखो जी मैं मालिक घर घर भी जाता हूँ भी कोई पानी वेस्ट ना करे
0: जी,
1: उनको ये बोलता हूँ भी जैसे आप कपड़े धोते हैं, ये कपड़े धो के पानी ना मंदाओ, इसको जैसे आप घर में पोछा लगाते हैं
0: उसमें काम लगा, आपके कुछ गमले हैं
1: उनमें पानी डाल लो, पर जिस जैसे मान लो आप पानी की वेस्टिंग करेंगे तो आपनों एक दिन भी मान लो जैसे ट्यूबवेल ना चले
0: जी,
1: तो आपनों उस चीज की कितनी दिक्कत आएगी
0: जी।
1: जब आप, मैं ये बोलता हूँ भी मान लो आप, मैं एक घंटा चलाऊ तो एक घंटे में सारे गाँव में पानी फिर गए, जब आप सही तरीके से यूज करेंगे
0: जी।
1: जब आप सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको पानी चार घंटे चला लो जी तो भी नहीं,
0: तभी नहीं पूरा होना।
1: हाँ जी
0: जी,
1: तो लोग फिर भी वाले बहुत में हैं भी जो समझ रहे हैं इस चीज को, बहुत ही कम पानी।
0: आप जहाँ पंप चलाते हैं वहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है?
1: इंतजाम तो बतेरे हैं जी, जैसे मान लो साफ सफाई भी है वहाँ पे, मान लो कोई जैसे जोड़ा कोई नंगा नहीं है, जैसे कोई गरीब है वो भी अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से लगा रखे हैं, सारी सुविधा जी वहाँ पे।
0: अंबाला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो ये कार्यक्रम रेडियो पे जब चलेगा तो पूरे अंबाला वासी कार्यक्रम को सुनेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: उनको भी यही कहना चाहूंगा भी एक तो माले अपने गांव-गांव में सब में जैसे मैं बोले अभी माले पानी भर लिया, कपड़े धो लिए, उसको घर में यूज करो, पोछा लगाने में, गमले में डाल लो, पानी की वेस्टिंग ना करो, पानी बहुत ही कीमती है। आज अपने गाँव में माले वाटर लेवल 350 पर मोटर पहुँच रही है
0: जी,
1: जब आप इसको वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में ये तो थोड़ा बरसात होगी जी, इस तरह का इतना वाटर
0: पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया,
1: ये बरसात ना पड़ती तो वाटर लेवल बना सकते।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस समय बात कर रहे हैं गांव अकबरपुर अंबाला से, और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गाँव की कहानी रेडियो की जुबानी के अंतर्गत, और मेरे साथ इस समय राज्य सरकार के पीएचई डिपार्टमेंट के पदाधिकारी भी साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जल ही जीवन है, अगर हमारे पास जल रहेगा तो ही हमारी जिंदगी सफल रहेगी और हम जिंदगी को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। और सरपंच जी, आपका और सभी का यहाँ पर गाँव अकबरपुर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात की, और लेता हूं आप सभी से इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ गाँव चले एपिसोड 13, जो आधारित था गाँव अकबरपुर अंबाला पर। पीएचई विभाग टीम के अमित खोसला, सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम, एडिट, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
3: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: वासी है हम उस देश के वासी।

0: हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। मक्का की बुआई का समय खत्म हो चुका, अब बेबी कॉर्न के लिए बिजाई कर सकते हैं किसान। फॉल आर्मी वर्म कीट नुकसानदायक, बुआई के बाद प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। दाने वाली मक्का की बुआई का उपयुक्त समय अब समाप्त हो चुका है, ऐसे में किसान वर्तमान मौसम में केवल बेबी कॉर्न की खेती करें। बेबी कॉर्न उत्पादन के लिए MH4 और पूसा MH4 मेल स्टेराइल किस्मों को उपयुक्त माना गया है। विशेषज्ञों के अनुसार बेबी कॉर्न की बुआई के बाद धान की पराली 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खेत में समान रूप से बिछानी चाहिए। पराली मल्च के रूप में कार्य करती है, जिससे खरपतवारों का उगाव कम होता है और फसल में उनकी समस्या नियंत्रित रहती है। मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे नुकसानदायक कीटों में से एक है। इसकी समय पर पहचान के लिए बुवाई के तुरंत बाद प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। यदि पौधों की पत्तियों पर बड़े व अनियमित छेद दिखाई दे या गोब वर्ल में कीट का प्रकोप नजर आए तो तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए। खेत की तैयारी, खेत की 4 से 5 जुताई करके 2 बार सुहागा लगाएं, ताकि खरपतवारों व ढेलों रहित अच्छी बीज शैया तैयार हो सके। बीज की मात्रा बेबी कॉर्न के लिए औसतन 12 किलोग्राम प्रति बीज एकड़ डालने से वांछित पौधों की संख्या प्राप्त की जा सकती है। बीज उपचार, रोगों व कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए बीज को पहले फफूंद नाशक और कीटनाशी से उपचारित करना चाहिए। दीमक व प्ररोह मक्खी की रोकथाम के लिए एमिडाक्लोप्रिड 70.8 SL तथा 7 मिली प्रति किलोग्राम व रोगों से बचाने के लिए थीरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीजोपचार के समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने, मुंह में मास्क लगाएं और हाथ में किसी प्रकार की चोट या खरोंच ना हो। लाइनों की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधों की 15 सेंटीमीटर रखें। पूर्व पश्चिम दिशा में मेड़े बनाकर बीज मेड़ों पर दक्षिण दिशा में 4 से 6 सेंटीमीटर गहरा बोएं। लाइनों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बिजाई यदि न्यूमैटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुड़ विधि का उपयोग करके की जाए तो मक्का का जमाव भी अधिक होता है व पानी का भी 30 से 35% बचाव होता है। खाद व उर्वरक, बेबी कॉर्न में ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद व रासायनिक उर्वरकों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय अच्छी गली व सड़ी गोबर की खाद 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। बिजाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसी आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। सामान्य दशाओं में बिजाई के समय पूरी फास्फोरस व पोटाश 52 किलोग्राम DAP व 40 किलोग्राम MOP का 1/3 नाइट्रोजन 45 किलोग्राम यूरिया डालें। सिंचाई, खेत में नमी बनाए रखने के लिए 6 से 8 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। दाने की दुधिया अवस्था व दाना सख्त होने की अवस्था में सिंचाई सुनिश्चित करें, वरना पैदावार में 15 से 20% की हानि हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा बरसात या तूफान की चेतावनी होने पर सिंचाई रोक दें। खरपतवार नियंत्रण, बेबी कॉर्न में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए 600 ग्राम एट्राजिन 50 WP को 200 लीटर पानी में मिलाकर
प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1 से 2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। टेम्बोट्रियन 42 SC 115 मिली प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। गर्मी में पौधों में कम खाद डालें, मल्चिंग विधि अपनाएं। पेड़ पौधों और हरी सब्जियों की पौधों की जड़ों को ठंडा रखना जरूरी। जून और जुलाई के महीनों में चलती गर्म हवाएं लू न सिर्फ इंसानों को बल्कि पेड़ पौधों और हरी सब्जियों को भी बुरी तरह झुलसा देती है। कमल सैनी BHO करनाल ने बताया कि इस मौसम में अक्सर देखा जाता है कि बागों में आम, नींबू और अमरूद के छोटे फल पकने से पहले ही काले होकर गिरने लगते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में बाग सब्जियों की खेती या घर के बगिया किचन गार्डन को तपती गर्मी और लू से सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक और स्मार्ट उपाय करने चाहिए। गर्मी में पौधों में कम खाद डालनी चाहिए और किसान मल्चिंग विधि अपनाएं। मिट्टी को ढकना पौधों के लिए सुरक्षा कवच। इस मौसम में सीधी धूप पड़ने से मिट्टी की नमी बहुत खत्म हो जाती है। इससे बचने के लिए पौधों सब्जियों के मुख्य तने के चारों ओर सूखी घास, पुआल, गन्ने की पत्तियां या सूखे पत्तों की 3 से 4 इंच मोटी परत बिछा दें। इसे मल्चिंग कहते हैं। यह परत सूर्य की सीधी किरणों को मिट्टी तक नहीं पहुंचने देती, जिससे जमीन की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और पानी की खपत भी आधी हो जाती है। सब्जियों की जड़ों को ठंडा रखने में यह विधि सबसे कारगर है। फल सब्जियां झड़ने की समस्या खत्म होगी। नींबू, आम व बेल वाली सब्जियों में इस समय फल फूल झड़ने की समस्या आती है। इसका प्रभाव फसलों के कुल उत्पादन पर पड़ता है। तल केचुआ खाद पौधों के लिए सुरक्षित और हल्का टॉनिक है। स्यूडोमोनास और ट्राइकोड्रामा को पानी में मिलाकर जड़ों के पास देने से इस मौसम में लगने वाली फफूंद से बचाव होता है। बोरोन और जिंक को फलों को फटने और झड़ने से रोकने के लिए बोरोन का बहुत हल्का छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में शाम के समय करना चाहिए। हरे पर्दे की ओट और दोपहर की छांव। अपने घर की छत या बालकनी में गमलों में बागवानी की है या छोटी क्यारियों में सब्जियां उगाई हैं, तो इस मौसम में 75% वाला हरा पर्दा जरूर लगाएं। ये नेट तेज धूप को छानकर पौधों तक पहुंचाती रहती है। इससे पौधों को भोजन बनाने के लिए जरूरी रोशनी भी मिल जाती है। रस चूसने वाले बारीक कीट के बचाव के लिए नीम के तेल का पानी में घोल बनाकर साथ में हल्का सा लिक्विड सोप मिलाकर हर 10 से 15 दिनों में शाम के समय पौधों पर छिड़काव करें। जून में खेत समतल कराने का सही समय। लेजर लैंड लेवरर से बचता है पानी, पड़ती है पैदावार। सिंचाई के पानी की 25 से 30% बचत, पैदावार में 10 से 20% वृद्धि होगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की कटाई के बाद जून में लेजर लैंड लेवलर मशीनों से खेतों को समतल कराया जाए तो खरीफ सीजन में धान, मक्का, कपास फसलों की बेहतर पैदावार मिल सकती है। लेजर लैंड लेवलर GPS लेजर तकनीक की मदद से खेत की ऊंची नीची भूमि को मिलीमीटर स्तर तक बराबर करता है। इससे सिंचाई का पानी पूरे खेत में समान रूप से पहुंचता है व कहीं भी जल भराव या सूखे की स्थिति नहीं बनती। समतल खेतों में 20 से 30% तक सिंचाई जल की बचत हो सकती है और उर्वरकों का उपयोग भी अधिक प्रभावी ढंग से होता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बीरवाल ने बताया कि गेहूं कटने के बाद खेत अपेक्षाकृत खाली रहते हैं, इसलिए जून में लेजर लेवलिंग कराने से मिट्टी को बैठने का समय मिल जाता है और खरीफ बुवाई के समय खेत पूरी तरह तैयार रहता है।
इससे बीज अंकुरण एक समान होता है तथा फसल की वृद्धि भी संतुलित रहती है। नीदरलैंड से लेवलर के फायदे। इससे हर मौसम में सिंचाई के पानी की 25-30% बचत होती है। किसानों की फसल की पैदावार में 10-20% की वृद्धि होगी। एक एकड़ खेत को समतल करने में केवल 2-4 घंटे लगते हैं। सरकार देती है सब्सिडी। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत लेजर लैंड लेवलर पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% व लघु सीमांत महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50% तक सब्सिडी मिलती है। पात्र किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056613010। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

बहनों भाइयों, 50 के दशक में गायकी की दुनिया में एक खूबसूरत नाम ने जन्म लिया। शानदार जानदार भारतीय गायिका के तौर पर सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज ने फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो लगभग सभी संगीतकारों के चेहरों पे इत्मीनान के साथ साथ खुशी की लहर दौड़ गई।

लता मंगेशकर की आवाज से मिलती जुलती आवाज सुमन कल्याणपुर ने सन 1956 में फिल्म मंगू के नाम से अपने करियर की शुरुआत की। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी सन 1937 को ढाका, अब बांग्लादेश में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने सन 1958 में रामानंद कल्याणपुर से शादी की। आपने अपनी गायकी की शुरुआत कर सन 1960 और सन 1970 के दशक में एक लोकप्रिय गायिका के तौर पे अपने आप को साबित किया।

उनकी आवाज लता मंगेशकर जैसी होने की वजह से कई ऐसे मौके भी आए कि संगीतकारों ने उन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के तौर पे उनकी आवाज का इस्तेमाल किया।

एक ऐसा मौका आया था जब सुमन कल्याणपुर ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की रिहर्सल की थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान उनसे ये गीत ले लिया गया था, जिसका मलाल सुमन कल्याणपुर को सारी जिंदगी रहा।

सुमन कल्याणपुर को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के लोकप्रिय गायकों में से एक माना जाता है।

उन्होंने सन 1960 के दशक में मोहम्मद रफी के साथ 140 से ज्यादा दुकानें गाई। सुमन कल्याणपुर की दुकानों की एक झलक।

जब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था और लता ने रफी के साथ गाने से इनकार किया था, तब मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई।

0: बोल मेरी जान तू कौन है?
1: परी।
0: बोल कहाँ से आई है?
1: आसमान से।
0: दिल का हाल बताएगी?
1: बताऊंगी।
0: जादू जरा दिखाएगी?
1: दिखाऊंगी।
0: तो बता क्या कहती शहजादे की तकदीर?
1: अरे वाह वाह वाह वाह, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी

0: तुम फिर यहाँ क्यों आए हो?
1: अपने गुनाह का कफारा अदा करने।
0: चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती।
1: आइंदा मैं खुद अपनी सूरत छुपाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त खुदा के लिए मेरे साथ चली चलो। मैंने तुम्हें इस्फहान पहुंचाने का इंतजाम किया।
0: इस्फहान?
1: सोचने का वक्त नहीं है ज़ैनब, जल्दी करो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 6। आज के लिए शीर्षक है, रिश्ते कमजोर कर सकता है मजाक उड़ाना। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, लेकर आई हूं पॉडकास्ट विद किरनी का एक और एपिसोड। आज का टाइटल है, रिश्ते कमजोर कर सकता है मजाक उड़ाना। कभी हंसना कभी हंसाना, यही तो है रिश्ते का हुस्न। लेकिन जब हंसी किसी की खुद पर पड़ जाए बारी, जब मजाक बन जाए किसी की कमजोरी, तो रिश्तों की दीवार में दरार आ ही जाती है। रिश्ते कमजोर कर सकता है एक दूसरे का मजाक उड़ाना। दूसरों के सामने एक दूसरे का उपहास हंसी के साथ साथ मनमुटाव का कारण भी बन सकता है। रिश्तों की ताकत विश्वास, सम्मान और भावनात्मक नजदीकी में है। संबंधों के तार ऐसे मजाक में कमजोर हो जाते हैं। परिहास और उपहास में अंतर होता है। हंसने मुस्कुराने और जिंदगी को सहज बनाने के लिए मजाक बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा मजाक नहीं जो किसी को चोट पहुंचाए, रिश्तों में कड़वाहट ले आए। लेकिन अक्सर जीवन साथी एक दूसरे के विषय में निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में कई बार ऐसी बात कह जाते हैं जो उस वक्त तो उन्हें मजाक के दायरे में लगती है, लेकिन वो रिश्तों के सम्मान के दायरे में बाहर होती है। ये मजाक जीवन साथी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है। एक मजाक रिश्ते को हिलाकर रख सकता है। विश्वास टूटता है जब पति पत्नी लगातार एक दूसरे का सार्वजनिक रूप से मजाक बनाते हैं, तो ये आपसी सम्मान को कम कर सकता है। इससे दूसरे व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है और विश्वास टूट सकता है। आत्मविश्वास को हानि, जब किसी के रूप वृद्धि या अन्य संवेदनशील पहलुओं पर बार बार मजाक किया जाता है, तो व्यक्ति खुद को अमूल्य महसूस कर सकता है। समय के साथ वो आत्मविश्वास पर असर डाल सकता है। आत्मविश्वास को हानि, जब

किसी के रूप वृद्धि या अन्य संवेदनशील पहलुओं पर बार बार मजाक किया जाता है तो वो व्यक्ति खुद को अवमूल्यित महसूस कर सकता है। समय के साथ ये आत्मविश्वास पर असर डाल सकता है। रिश्तों में नकारात्मकता। पारिवारिक या सार्वजनिक रूप से मजाक के जरिए नाराजगी या आलोचना व्यक्त करने से अवमानना को सामान्य किया जा सकता है। यदि समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें मजाक के रूप में टालने की आदत बन जाए तो इससे रिश्ते में नकारात्मकता बढ़ सकती है। भावनात्मक दूरी बढ़ती है। हालांकि शुरू में मजाक हल्का व मजेदार लगता है, लेकिन ये समय के साथ भावनात्मक दूरी बढ़ा सकता है। जब एक साथी महसूस करता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है तो वो दूर हो सकता है। बात निजी नहीं रह जाती। मजाक बिना संदर्भ के किया जाए तो ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि रिश्ते में समस्या है, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती है। मन में डर बैठ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अगली बार जीवन साथी के साथ कहीं न जाए, क्योंकि उसे वो डर होगा कि कहीं वो मजाक का कारण न बन जाए। ये डर घर में दूरियां बढ़ाता है। ये पता ना हो कि जीवन साथी किस बात से मजाक बना देगा या देगी, तो आपस में दूरियां बढ़ना स्वाभाविक है। समझदारी और समाधान जरूरी है। कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे हाथ की उंगलियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी है कि कोई आए और इसे खाली जगह को अपने हाथ और अपने साथ से भर सके। जीवन में साथ निभाने वालों से यात्रा आनंददायक होने के साथ सम्मानजनक भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते का सम्मान करना चाहते हैं तो बेहतर है कि समय रहते समाधान कर लिया जाए, क्योंकि बाद में फिर सूखे पेड़ को पानी देकर उसके हरे भरे होने की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए दोनों नियम तय करें। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलेंगे और ना ही ऐसी कोई बात करेंगे जिससे एक दूसरे की छवि पर असर पड़े। अगर किसी बात पर नाराजगी है तो उसे घर तक सीमित रखेंगे, दूसरों के सामने नहीं लाएंगे। परिवार विशेषकर बच्चों के सामने हम एक दूसरे की कमियों या गलतियों पर चर्चा नहीं करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे। किसी भी समस्या या कमी पर हम अकेले में बात करेंगे और सार्वजनिक आयोजनों में एक दूसरे की अच्छाइयों की सराहना करेंगे। कोई बाहरी यदि किसी का मजाक बनाए तो दूसरा उस स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा। रिश्ते ये सिर्फ बोलने से नहीं बनते, ये महसूस करने से बनते हैं, समझने से, सुनने से और सबसे ज्यादा इज्जत देने से। कभी कभी हम हंसी हंसी में कुछ कह जाते हैं जो दूसरों के दिल पर निशान बन जाते हैं और रिश्ता छुपके से एक कदम पीछे हट जाता है। तो आज बस इतना ही कहना है। हंसी जरूर बांटिए, पर किसी के ऊपर नहीं, किसी के साथ हंसिए। कहना आसान है, लेकिन समझाना और निभाना वही असली रिश्तों की अहमियत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आप सुन रहे थे एक जज्बाती पहलू, रिश्ता कमजोर करता है मजाक उड़ाना। फिर मिलेंगे एक नए जज्बात नए पहलू के साथ एक नए पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने रिश्तों का भी। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आपको मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे, मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबां थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम लौट आए।

वो था पानी का बुलबुला जो बनता रहा मिटता रहा। कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उड़का नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ। अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्ते।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 12। आज का कार्यक्रम आधारित है गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पर। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.0 FM रेडियो वितस्ता और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। पेश है वो कार्यक्रम जो आपकी यादों में सबसे मीठे पल घोल देता है, यानी कि सुनहरे पल। आज का ये प्रोग्राम एक ऐसी हस्ती के नाम है जिनकी आवाज ने पीढ़ियों को प्यार करना, खुश होना और जिंदगी जीना सिखाया। 40,000 से ज्यादा गाने, 16 भाषाएं, 6 नेशनल अवार्ड्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SP बालासुब्रमण्यम, यानी हमारे सबके प्यारे बालू सर की। आज हम उनके बचपन की मासूमियत से लेकर संगीत के समंदर में उनके अद्भुत सफर तक चलेंगे। उनका जन्म 4 जून 1946 को नेलोर, आंध्र प्रदेश में हुआ। घर में संगीत का माहौल था क्योंकि पिता SP साबरमती एक जाने माने हरि कथा कलाकार थे। अजीब बात ये थी कि संगीत उनके खून में था, फिर भी बालू सर इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को एक आवाज का इंजीनियर मंजूर था। कॉलेज के दिनों में ही सिंगिंग कंपटीशन में जीत का सिलसिला शुरू हुआ और 1966 में तेलुगु फिल्म श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना से एक युग की शुरुआत हुई। आइए उनके उस सफर को याद करते हुए सुनते हैं वो गीत जिसने उनको पूरे भारत का चेहरा बना दिया।

ये आवाज का जादू। ये गाना सिर्फ हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री नहीं थी बल्कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पहला नेशनल अवार्ड भी था। दोस्तों, बालू सर को गाना गंधर्व कहा जाता था। ये नाम यूं ही नहीं मिला, वो हर जोन में माहिर थे। एक तरफ शंकराभरणम में शास्त्रीय संगीत की कठिनता, तो दूसरी तरफ मैंने प्यार किया में पॉप की चंचलता। उनकी सबसे बड़ी खूबी, उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी अलग अलग भाषाओं में नेशनल अवार्ड जीते। ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। और केवल गाना ही नहीं, उन्होंने 45 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, कई फिल्मों का संगीत निर्देशन किया और यहाँ तक कि सलमान खान, कमाल हसन और रजनी के लिए डबिंग भी की। एक इंसान, प्रतिभाएं अनेक। सुनते हैं उनकी आवाज का वो रूप जिसने सिद्ध कर दिया कि वह शास्त्रीय और सुगम संगीत के बीच की दूरी को मिटा सकते हैं।

अद्भुत। इस गाने को सुनकर ही एसपी भी सर के गायन की गहराई महसूस होती है। अब चलते हैं 90 के दशक में, जब एक युवा संगीतकार एआर रहमान अपनी धुनों से दुनिया को बदल रहे थे। इस बदलाव में भी बालू सर की आवाज पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक खूबसूरत पुल बन गई। और उस दौर में एक शानदार संगम था बालू सर की आवाज और रहमान का संगीत, और उन दोनों की जुगलबंदी युवा पीढ़ी पर ऐसी छा गई कि वो उनका गाया हुआ गाना आज भी लोगों के दिलों में राज करता है।

दोस्तों, बालू सर के हिंदी सिनेमाई सफर की बात हो और सलमान खान की बात ना हो तो ये सफर अधूरा है। 90 के दशक में बालू सर की मासूमियत और मीठी आवाज सलमान खान के लिए रोमांटिक पहचान बन गई। ये जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि हर दूसरी फिल्म में उनकी आवाज जरूरी हो गई। इन गानों में से एक साफ भोलापन था जो आज भी हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। पेश है उनकी सबसे बड़ी रोमांटिक सफलता जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला।

एस पी बालासुब्रमण्यम अपने पहले गुरु संगीत निर्देशक एस पी कोंडांडपानी को बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा था। उनका सबसे सफल और अटूट बंधन संगीतकार इलैयाराजा के साथ रहा। इन दोनों की जोड़ी ने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा को कई यादगार क्लासिकल दिए। इसके अलावा उन्होंने के वी महादेवन और एम एस विश्वनाथ जैसे दिग्गज संगीतकारों से लेकर ए आर रहमान तक हर पीढ़ी के संगीतकार के साथ काम किया। उनकी आवाज की अनुकूलन क्षमता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी।

रिकॉर्डिंग के मामले में एसपीबी की गति और क्षमता पौराणिक थी। उन्हें संगीत जगत में उनकी अविश्वसनीय गति के लिए जाना जाता था। उन्होंने एक दिन में 21 कन्नड़ गाने, 19 तमिल गाने और 16 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए थे। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, उन्होंने रिकॉर्ड समय में भी गानों की गुणवत्ता और भाव को कभी कम नहीं होने दिया। उनकी ये पेशावर क्षमता उन्हें किसी भी स्टूडियो के लिए सबसे पसंदीदा गायक बनाती थी।

ये तथ्य अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित करता है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम ने औपचारिक रूप से शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके बावजूद उन्होंने शंकर भ्रमण और सागर संगमम जैसे फिल्मों में जटिल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए। उन्होंने खुद को फिल्म संगीत का गायक बताया, जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शास्त्रीय ज्ञान का उपयोग करता है। ये उनकी सहज प्रतिभा और गहन आत्म अध्ययन का प्रमाण था कि वो बिना औपचारिक प्रशिक्षण के भी शास्त्रीय गीतों को महारत हासिल कर सके।

गायक और अभिनेता होने के अलावा एस पी बालासुब्रमण्यम एक सफल टेलीविजन करियर भी बनाए। वह तेलुगु सिंगिंग रियलिटी शो पड़ोथा थियागा के होस्ट थे, जो भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला रियलिटी शो में से एक है। इस शो के माध्यम से उन्होंने न केवल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि एक दयालु संरक्षण और मार्गदर्शक के रूप में अपनी छवि को मजबूत किया। दक्षिण भारत में उनकी होस्टिंग ने उन्हें हर घर का चहेता बना दिया।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विथस्ता। इस टाइम जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल और आज के गायक है एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया था, पद्मश्री 2001, पद्म भूषण 2011 और मरणोपरांत पद्म विभूषण 2021। उन्होंने कुल 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अनगिनत राज्य स्तरीय पुरस्कार जीते। 25 सितंबर 2020 को कोविड-19 की जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन अपनी गायकी के माध्यम से वो भारतीय संगीत की एक अमिट विरासत छोड़ गए। उनकी आवाज जो क्लासिकल से लेकर पॉप तक हर तरह के भाव को छूती थी, पीढ़ियों तक श्रोताओं को प्रेरित करती रहेगी। कोविड-19 के दौरान उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी, जो दर्शाता है कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक प्यारे इंसान थे जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। कोविड-19 के कारण संगीत का ये समंदर शांत हो गया, एक ऐसी क्षति जिसे भारतीय संगीत कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आवाजें मरती नहीं, वो अमर हो जाती हैं। बालू सर के गाने हमेशा हमारे सुनहरे पल बनकर रहेंगे। आइए उनकी याद में उनकी आवाज का एक और अनमोल रत्न सुनते हैं।

अब आज के सुनहरे पल के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं दोस्तों। एसपी बाला सुब्रमण्यम सर एक आवाज नहीं थे, वो तो एक पूरा दौर थे। उनका 40,000 गानों का सफर हमें सिखाता है कि अगर कला दिल से की जाए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। उनकी आवाज हमेशा हमारी यादों में गूंजती रहेगी। बालू सर को हमारा अंतिम प्रणाम और भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसके साथ ही मैं किरणी आप सभी श्रोताओं से चाहूंगी इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए सफर में, किसी नए कार्यक्रम में, किसी और सुरीली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। सभी श्रोताओं को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 12। आज का एपिसोड आधारित था गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पर। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। हम हर मर्तबा बात करते हैं किसी भी एक गोल्डन एरा मूवी के बारे में और जानते हैं उनके अनकहे किस्से और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1971 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जो कि गुलशन नंदा जी की एक नावल पर आधारित थी और इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। लीड रोल में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, आशा पारेख और उस समय के जाने माने विलन प्रेम चोपड़ा। और कहा जाता है इसी फिल्म में प्रेम चोपड़ा विलन के रूप में हिंदी सिनेमा में उभरे थे और ये फिल्म थी कटी पतंग। इस फिल्म के कंपोजर थे आरडी बर्मन साहब और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के किस्से जारी रहेंगे, फिलहाल सुनाता हूँ एक गीत किशोर कुमार जी की आवाज में।

गीत तो था बहुत सुहाना और हम बात कर रहे हैं फिल्म कटी पतंग की, जिसे रिलीज हुए 52 साल पूरे हो चुके हैं। हम सब ने इस फिल्म की लीड अदाकारा के रूप में आशा पारेख जी को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं शक्ति सामंत जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनकी पहली पसंद आशा पारेख

उम्मीद करता हूँ कि यह गीत आपको पसंद आया होगा। अब आते हैं हमारे फिल्मी किस्से पर। हम बात कर रहे थे किस तरह यह रोल आशा पारेख जी को मिला। कहा जाता है उस समय शक्ति सामंत जी की पहली पसंद शर्मिला टैगोर थी और सबसे पहले यह रोल उन्हें ही ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय वह माँ बनने वाली थी जिस वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। यह फिल्म उस समय के संवेदनशील विषय पर बनी थी जो था विधवा विवाह, और जब आशा पारेख जी ने यह रोल सुना तो इस वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए झट से हाँ कर दी, और इस तरह हमें मिली कटी पतंग की मधु। और भी किस्से बाकी हैं, उससे पहले सुनिए एक प्यारा सा गीत और लौटकर बताएंगे इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का किस्सा।

गाना हुआ खत्म, अब आप लौट आइए उन फिल्मी किस्सों की तरफ। अगला किस्सा है इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का। जैसे कि हम बात कर रहे थे, यह फिल्म बहुत संवेदनशील विषय पर बनी थी और राजेश खन्ना तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने एक महिला प्रधान फिल्म में काम करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। इस फिल्म का ज्यादातर दारोमदार आशा पारेख जी पर था, लेकिन फिल्म के सारे हिट गाने राजेश खन्ना जी पर फिल्माए गए थे। परंतु फिल्म का शीर्षक गीत, जो कि लता जी ने गाया है, वह आशा जी पर फिल्माया गया था। आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है, जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मेरे दिल में हुक सी उठती है। आइए अब आपको यह गीत भी सुना देता हूँ।

अब हम लौट आए हैं कटी पतंग से जुड़ा एक और किस्सा लेकर। इस फिल्म के ना केवल गाने मशहूर हुए बल्कि इस फिल्म ने उस सदी के खलनायक और खलनायिका को भी पहचान दी और लोगों के बीच मशहूर भी किया, जिसके बाद उन्होंने खलनायक के रूप में कई किरदार निभाए। और साथ ही साथ इस फिल्म के एक गाने ने बिंदु जी को रातों रात हिंदी सिनेमा की आइटम गर्ल बना दिया। अब सुनाने जा रहा हूँ आपको वही गाना आशा भोसले जी की आवाज में।

शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो,

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर फिल्मी किस्से एपिसोड 2। उम्मीद करता हूँ किस्से सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और इस फिल्म के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अब बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंत की ओर। आपको सुनाते हैं एक और किस्सा जो कि जुड़ा है सचिन देव बर्मन जी से। कहा जाता है राजेश खन्ना जी की इससे पहले बनी फिल्म आराधना में बतौर संगीतकार सचिन देव बर्मन ने काम किया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने उस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग करवाई। बाद में कटी पतंग में जब आरडी बर्मन को संगीत निर्देशन पर प्रयोग करने का खुला अवसर मिला तो उन्होंने कमाल संगीत बनाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। अब इसी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ एक और गीत के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा और अगले अंक में आप कौन सी फिल्म के किस्से सुनना पसंद करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। आपसे जल्द मुलाकात होगी और भी फिल्मी किस्सों के साथ। सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, रिकॉर्ड एडिट और प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, लेखक एवं निर्देशन सेजल पुंज। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विद आस्था की

0: नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों,
0: रेडियो विदस्ता की पूरी टीम
1: मन की बात में
0: एक बार फिर समय के लिए
1: आप सबसे जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को, इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। मैं इस उपलब्धियां हासिल की जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहे, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती है। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट बीजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति

0: करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी श्रोताओं, आप सुन रहे थे मन की बात का 135वां अंक और ये मन की बात प्रस्तुत करते हैं देश के सामने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, और आइए सुनते हैं हमारे प्रसारण। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरे दिन के लिए रहने के लिए। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर नोट कर दीजिए, 7056413010।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, रेडियो वित्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते। सुनते रहो अपने

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउण जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा

करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा।

0: सवरिया ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: बालाकैंड का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: रहो अपने पसंदीदा की। सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
4: कर दिया मेरे ते जो सर्दिया तेरे नाल फुटवा कराउन जो
3: रेडियो वितस्ता
4: असले पौन पटाके
3: सुन मेरे दिलदार 90.0 में।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: Não, minha legume, mazuri. Minha mãe, minha legume. Escuta, escuta, sarram, conhece o batão, as contra que água de novo.
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो

0: प्लीज प्लीज, अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया, तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
0: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
1: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
0: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है, जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
1: जी।
0: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है
1: जी,
0: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनर्जी फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
1: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
0: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4-6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 times अ डे अ वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
1: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
0: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना, या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी ये है, आमतौर पे उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये कराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसके भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस नर्व डिजीज, सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू
1: सो मच।

सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है, जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं, तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा, उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है खून की, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेड ब्लड डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेते रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिन बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल्स में एनुरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है, उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत

0: जरूरी है।
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पर कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना, या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी इसके भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं

प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

बहनों भाइयों, 50 के दशक में गायकी की दुनिया में एक खूबसूरत नाम ने जन्म लिया। शानदार जानदार भारतीय गायिका के तौर पर सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज ने फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो लगभग सभी संगीतकारों के चेहरों पे इत्मीनान के साथ साथ खुशी की लहर दौड़ गई।

0: लता मंगेशकर की आवाज से मिलती जुलती आवाज सुमन कल्याणपुर ने सन 1956 में फिल्म मंगू के नाम से अपने करियर की शुरुआत की। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी सन 1937 को ढाका, अब बांग्लादेश में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने सन 1958 में रामानंद कल्याणपुर से शादी की। आपने अपनी गायकी की शुरुआत कर सन 1960 और सन 1970 के दशक में एक लोकप्रिय गायिका के तौर पे अपने आप को साबित किया।
1: पुकारा हम चले आए जा।

उनकी आवाज लता मंगेशकर जैसी होने की वजह से कई ऐसे मौके भी आए कि संगीतकारों ने उन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के तौर पे उनकी आवाज का इस्तेमाल किया।

एक ऐसा मौका आया था जब सुमन कल्याणपुर ने ए मेरे वतन के लोगों गीत की रिहर्सल की थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान उनसे ये गीत ले लिया गया था, जिसका मलाल सुमन कल्याणपुर को सारी जिंदगी रहा।

0: सुमन कल्याणपुर को मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के लोकप्रिय गायकों में से एक माना जाता है।
1: चल

उन्होंने सन 1960 के दशक में मोहम्मद रफी के साथ 140 से ज्यादा दुकानें गाई। सुमन कल्याणपुर की दुकानों की एक झलक।

जब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था और लता ने रफी के साथ गाने से इनकार किया था, तब मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: पेशा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 4, प्रस्तुत करेंगे RJ

सभी सुनने वालों को किरणी का नमस्कार। पेश है कार्यक्रम सरगम। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के गीत के साथ, जिसको संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, जिसके गीतकार है अनजान और गायक है किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

पहली पेशकश है फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए से, जिसके संगीतकार और गीतकार है रविंदर जैन और गाया है हेमलता ने।

लीजिए आप सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम कहानी से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है आनंद बख्शी। मैं तुझे प्यार

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है सरगम।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है फिल्म त्रिशूल से, जिसके संगीतकार है खयाम, गायक है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश, और गीतकार है साहिर लुधियानवी।

लीजिए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कारवा का गाना, जिसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है आरडी बर्मन।

अब सुनाने जा रहे हैं वर्मा मल्लिक का लिखा हुआ गीत, जिसको संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गायक है लता मंगेशकर और फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

अगली पेशकश है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश किशोर कुमार की आवाज में गाना, जो फिल्म है अमर अकबर एंथोनी से, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनते हैं आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, जिसके बोल है आनंद बख्शी के, गायक हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म है हरे कृष्णा हरे रामा।

लीजिए पेश है प्रोग्राम की अंतिम पेशकश, जिसके गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक आशा भोसले और फिल्म है लोफर। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक। इन मौसमों के गुम हो जाने तक कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफन।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

ढलते ही सुबह का उजाला एक नई उम्मीद को जन्म देती है। फूलों के चमन में बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हैं और ये दौड़ते बादल सारे आकाश को नीला करते हुए खुद को छिपा रहे हैं बादलों की कतारों में। यह हमारी सुबह का आगाज मुस्कुराहट से भरपूर।

परछाइयों के इस शहर में अब खाली है मेरा आंगन। काश कहीं से धूप निकल आती, शायद हम उनके दीदार कर पाते, उनको फिर से अपने सीने की आग से रूबरू कराते और ये बताते कि मैं अभी भी सुलग रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तस्कीने दिल की खातिर वादा तो कीजिए, हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। हम प्रसारण करते हैं अम्बाला छावनी से, और हम बात करते हैं अम्बाला की। और इस सामुदायिक को स्वीकृत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अम्बाला के लिए। हम बात करते हैं आपकी, और सिर्फ वो बात करते हैं जो रखती हो आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां गवाही दे रही है कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर आपका अपना चाहिदा स्टेशन रेडियो वितस्ता। सुबह की पहली किरण से लेकर अब तक सुरों का जो कारवां हमने साथ मिलकर तय किया वो बेहद खूबसूरत रहा। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। हर दिन हम किसी खास विषय पर बात करते हैं, आइए आज के विषय पर हम बात करते हैं। आज का विषय है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। श्रोताओं, 28 जून का यह दिन हमारे पूरे देश के लिए बेहद खास है और गौरवशाली भी। आज का दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है? एक समय था जब पोलियो महामारी ने हमारे देश के अनगिनत मासूम बच्चों का बचपन छीन लिया था, लेकिन हमारे देश के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और आप जैसे जागरूक नागरिकों ने के संकल्प ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। साल 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन याद रखिए, जीत को बनाए रखना उससे हासिल करने से ज्यादा मुश्किल होता है। पड़ोस के कुछ देशों में आज भी पोलियो का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वायरस की वापसी को रोकने के लिए हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की पिलाना आज भी उतना ही जरूरी है। स्वस्थ बच्चे ही एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। अगर आज आपके आसपास कोई बच्चा इस खुराक से छूट गया है तो कल सुबह ही उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जरूर ले जाएं और पिलाएं 2 बूंद जिंदगी के। यह था आज का विषय, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक भी हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पर जो हम अभी कुछ क्षणों में आपके लिए बोलेंगे, और आप नोट कर दीजिएगा, आसान सा नंबर है। आइए आज के इस खूबसूरत सफर को समेटते हैं कुछ अल्फाजों के साथ जिनमें हमारी यादें हैं, हमारे शहर है और आज के दिन का संकल्प भी। आज की पंक्तियां यूं है, अम्बाला की इस महकती फिजा से पैगाम आया है, अम्बाला की इस महकती फिजा से पैगाम आया है, वितस्ता के सुरों ने हर दिल को बहलाया है। एक बार फिर पढ़ता हूं, अम्बाला की इस महकती फिजा से पैगाम आया है, वितस्ता की सुरों ने हर दिल को बहलाया है। आज 28 जून का ये दिन दे रहा है सेहत की सौगात, आज 28 जून का ये दिन दे रहा है सेहत की सौगात, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान रहे यही है सबसे बड़ी बात, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान रहे यही है सबसे बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बच्चा हमारे देश का बहुत ही अमूल्य है, बच्चे स्वस्थ तो हमारा देश स्वस्थ, साथ ही हमारा प्रदेश और हमारा घर भी स्वस्थ। तो यह था आज के विवरण और आज की पंक्तियां। आइए आज आपको विवरण कल के कार्यक्रमों का देता हूं। कल 29 जून 2026 सोमवार को जो कार्यक्रम पूरे दिन के लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत हम 5:58 पर करते हैं, और शुरुआत करते हैं वंदे मातरम से और लाते हैं आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत होगा। 7:05 पर सोमवार को आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। कल होगा एपिसोड 3। हमारे साथ होंगी डॉक्टर शीतल कुमार। 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का सफर शुरू होगा हफ्ते के लिए। कल एपिसोड 2 होगा सच्चाई जिंदगी की। पेश करेंगे
नरेश शर्मा। 9:30 कार्यक्रम होगा दोस्ती अनमोल, एपिसोड 1 पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 10:05 पर होगा कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें, राजेश खन्ना पर तैयार किया गया ये कार्यक्रम पेश करेंगे रमेश मरहटा, और संगीत की सभा जारी रहेगी 6:00 भक्ति संगीत, और 6:30 शाम में गजल, और 7:00 होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10। कल का कार्यक्रम हमने तैयार किया है संगीतकार ओपी नैयर पर, पेश करेंगे आरजी किरणी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है शमी कपूर और शमशाद बेगम। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद करेंगे और अपना फीडबैक भी भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर नोट कर दीजिए, 7056413010। अब वक्त है आज के इस प्रसारण को यहीं पर थामने का, रेडियो वितस्ता के आज के इस पूरे सफर को विराम देने और समापन की इस खूबसूरत धुन को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं हमारी टीम रेडियो वितस्ता और भारत सोपोरी। उम्मीद है हमारा और आपका ये साथ कल सुबह एक नई ऊर्जा, नए गानों और नई उमंगों के साथ, साथ में नए तरंगों के साथ फिर से जुड़ेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, उन्हें अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दें, और सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6:00 से रात के 9:00 तक। कल सुबह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।